जबुद कर करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब या कर कर तो हो कब हूँ तुम मिलत देह तर सब हूँ।

कहूँ सिमट भाई शंकर कैठा। तिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंभव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बाढ़ सिख संघरों।

सिमरत सासर वेद सबै बौ भेद कहे हम एक न जानियो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखानियो। दोहरा

चित्तकर गामु सोहिला शिवरे हसर जनहारो तुम गामो मेरे निरपव का सोहिला हो वारी जित सोहिला सदा सुखाओ नित नित जीड़े समय देखे का दे बनहार तेरे धन कीमत ना पवै तस दाते कौन संभार।

आनंद सावधा पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रवान करनी तो आओ हम आनंद सावधा पाठ सारे मिलके करिए गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई पाई साहब जी जिन्होंने आरती ने बख्शिश करके ए दात बख्शी तो आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शे खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते कीर्तन भेद गाउण अरदास कराते हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग की दात बख्शो

दर्शन के लिए। हे रविदास, इस आस पे बैठा है कभी ना तेरे दर्शन हो और साथ संगत जिदे मन में इन्ना वैराग हो वे, वो फिर दुनिया दे राग रंगा वाल तन दौलत वाल किवें ध्यान।

क्यों ना रविदास का ब्याह कर दे, घरवाली आएगी स्वभाव बदल जाएगी, जिम्मेवारी को भी भगत रविदास का ब्याह कर देता। भगत जी की शादी हो गई पर सात संग भागा ने कर, घरवाली ऐसी मिली जे भगत रविदास कहते ने दिन है, ते घरवाली अगों हाथ जोड़ के कहती है सत वचन स्वामी जी दिन है। जे भगत जी कहते ने रात है, ते घरवाली कहती है सत वचन रात है। भगत रविदास जे अमृत वेले तीन बजे उठते हैं, ते घरवाली उन्हां तों पहला उठ के इशनान करती है और भगत जी वास्ते पानी भर के रखती है इशनान वास्ते। स्वाहिक विचार सात संगत नाम भी तां जपिया जा सकता है जे घर विच सलूक हो। हुण एक अमृत वेले उठ पवे ते दूसरा आके ना आप सौंदा है ना सानू सौण देंदा, सवेरे ही कल्पना पै जाए तो उन्हें नाम की जपना आपको सतनाम सिंह एक गल याद आए। कबीर साहब घर बैठे सन, अपनी घरवाली माता लोही नू कहन लगे लोहिए अग बाल। घरवाली कहती सत बजे अग बाल दे। फिर कबीर साहब कहते ने उत्ते कड़ाई रख सत बचन। फिर कबीर साहब

सब कुछ है जो सात वज्र नहीं तो फिर कुछ भी। एक कथा केवल सुनन वास्ते नहीं सिख्या वास्ते के पति पत्नी होन ते उन्हां दा सुभाव और विचार कैसा होवे भगत कबीर साहब वरगे। कबीर साहब कहंदे ने अखबार ते घरवाली कहती है सात वज्र। हुण इस नूं सुन के असी अपने मन विच देखिए असी किन्ना कि एक दूसरे का कहना मन दे। पति कहंदा है ते घरवाली जी करके अगू बोलती सात वचन कह या घरवाली कुछ कह।

बचा रहे हो। पर माता पिता और दुखी हो गए। अगे ते पुत्र दानी सी, अगो नूह भी दानी निकली, अगो सतनाम सिरवाई। एक दिन माता पिता ने कहा, रविदास तेनू पाले और तेरा विआह कर दिता। सोचे असी तू कमाई करके सानू खुआएगा, पर तू ते दानी असी तेनू कमा के नहीं खवा सकते। इस तरह कर जो समान चाहिए ले ले ते वखरे हो जा। साडे वालों कमाई कर, साडे वालों दान करी। माता पिता ने वखरे आकर दिता। शाही रस्ते ते अपनी चौकी पा ले, चौपड़ी पा ले। पर अजमान ढाडा दुखी होया। मापिया ने केवल इस करके वखरे कर दिता कि मैं पैसे नहीं कमांदा ते की दुनिया में जो सारे रिश्ते तन दौलत दे। मन दुखी होया ते अपने माधो दे नाल शब्द द्वारा इस तरह फिर भगत जी वचन करते

गंगा स्नान करेंगे। भगत जी घर वापस आए, दिन बीतते गए। एक दिन एक महात्मा रविदास जी की चुटी विच आए, अपने सुभाव अनुसार जो कुछ बल्ले सी सेवा की। जान लगे वो महात्मा कहते ने, रविदास तू बड़ा गरीब है, तेरे को माया नहीं है, मेरे को एक पारस है, ये पारस तू ले ले। ये पारस जिन्हों भी लाएगा वो चीज सोना बन जाएगी, सोना बाजार बेच ते सोने मंदिर मकान बना, आए गए की सेवा कर। सत्संग भगत रविदास जवाब की देते उस साधु, कह लगे महात्मा मेरे को इना समा नहीं कि पहला मैं पारस के नाल सोना बनाव, फिर उस सोने नु बाजार बेचन जा, जिन्ना समा मैं सोना बना के बेचना है उन्ना समा

हर कोई गुरमुख भी नहीं हो सकता। आप माता जी में मर्जी कह देने हैं, आओ गुरमुख हो गई आओ। अजकल तो लोग दोहरी जिंदगी जीते, उतो कुछ होर ते बाहरों कुछ होर। उतो दिखावा इना के देखण वाला ये कवे कि ए वर्गा कोई गुरमुख है ही, ए वर्गा दानी कोई, ए वर्गा पुन्नी कोई। ते अंदरों अंदरों लालसा ऐसी कि जे वास चले ते सारी दुनिया लुट के खा जाए। इथों तक देखे है कि लोग धर्म के नां से भी ठगिया कर दी, थोड़ा जिहा दान पुन कर दिता लोगों नूं दिखाण वास्ते ते बाकी सारा कुछ आप सांभ लिया। वड्डिया वड्डिया उगराहियां भी होंदियां, थोड़ा जिहा लोग लगांदे ने धर्म के नां से ते बाकी आप सांभ लैंदे। धार्मिक स्थानां दा भी हाल ते धार्मिक लोगों

तेरे तो पहला भी लोग बड़ा कुछ जोड़ गए, जोड़ते ही रह गए, नाल तो कुछ नहीं रह गए, जोड़े आए थे।

बड़े समय बाद ओही महात्मा फिर आए, पगली ओही हालत ते पुछ देने रवदास, मैं तेरे एक पारस दे गया सी, ते भगत जी कहते ने मैनू ते पता नहीं जिथे रख गए सी उथे पिया होगा, आखो सतनाम से गए। वह पारस दरवाजे दे नालो खोलिया, पारस हाथ विच पकड़िया, ते वो महात्मा कौन है? वो महात्मा और कोई नहीं, आप हरि परमात्मा है, आखो सतनाम से गए। प्रिख्या लैण आए सन, समझ गए भगत ने माया ते

भगत जी ने मुंह परले पासे कीता ते ओ महात्मा बैठे बैठे आलोक हो गए। भगत जी कहंदे ने उधर ते कुछ भी नहीं, जब सामने देखे ते ओ महात्मा आलोक हो चुके। हुण मन वैराग नाल भरिया, ओए मना ओ आप तेरी झुग्गी विच आया पर तू पहचान ना सके। मन वैराग नाल भरिया ते भगत रविदास जी फिर ये शब्द

देख प्रियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन स्वद सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जर जर संग अनुप तंग सरंग सवारी कोट तरंग करंग से कुदत पवन के गुण को जातन बारे भारी पुजान के भूपली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पाए तो कह पाए भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत पुराए सब देश दसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गोड़ गजान के सुंदर ही सत ही है राज हजारे भूत पैक भवान के भूपत गण भूत पैक भवान के भूपत कौन गण नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन

तेरा कर सब सुवर्ण सब नंगलं समरथ स्वामी सुख उम्र हो बसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच साहिबा क्या नाही कर तेरा ही कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सब सलाह तेरी ना मन मसावे नाम जिनकै मन मसिया वाजे शब्द कनेरी कह नानक सच्चे साहिबो क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबानो कीता गुरु बिट्टा हो जिस दियाँ यह वडियाइया कह नानक सुनहो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपहगै कर सपहगै शब्द वाजे करा जित करत हरिया पंच दो तुदवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर पाया तुझिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होवा तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन

एक वेक परस में आयां लभ लोभ अहंकार चुकां सतगुरु भला पायां कह नानक जिसनु आप तठा तन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली चाल निराली भगता हकेरी बिख मारु चरणां लभ लोभ अहंकार ताल तृष्णा बहुत नाहीं बोलना। खन्ने हो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आपत जया हर वासना समानी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली।

ना है तुटे ना मल लगे ना है जले ना जाए तहन समान स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मोलना है बे चौके पाए सिख कंचड़ाई।

मन का सुख लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सुतक वेखना पात्र परतन रूप कनी सुतकन पहला इतवारी खाए नान कंसा आदमी।

हो भर्तव्य को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी हो वै पास साहिब से हुक्म न चल।

मैं तेरे दर्दा भिखारी हां, मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने, गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान श्री